0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: बेन मोटरसाइकल घुमाकर धरने करी ना
2: बैठा बैठा ब्रह्मयाना रसा रसा मोर पास बैठाई वो एक जना ब्रह्मयाना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम फुगाईवेर ब्रह्मया बेहोश हुई सेक नापिला को से पासा से पकड़ का बैठा पड़ता का
3: ब्रह्मयाना अगर हुई ना कही के मैं पकड़ का बैठा तू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई लग कारण सर्पदंशक ब्रह्मयान उपचार केन्द्र लेना सजिलो हुई बा
2: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्मयान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेर का सुझा का लगभग एंटी भेनम भैलक उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ता
1: अपना उम्र जैनी करी ना मई द्वार लगा के राजे
2: वहाँ न कतलक सपा का फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुईला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
3: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई जी
4: सफर डल डारन कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच समय सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जा रही सफ कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेटिठा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
8: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
9: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
8: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
9: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
10: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584-89213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
11: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
12: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत, का कहीं ना हो का?
11: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेला बाटा, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का, टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटा नी हुई, कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
13: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
14: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98548-5143-26।

0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: के तपाईलाई थाहा छ,
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र?
2: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टीकापुर, कैलाली।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस्तो?
1: मै नै जाइम, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नै निकर छु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, हुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477।

0: राम ई लड़का फिर कब्बू कापी रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से आज देशभर कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना, सतर्कता अपनाइन नागरिक उपरण मौसमविद के आग्रह। समझौता के मिति से 3.5 वर्ष समय ओरैला सफेन कैलाली के हुलाकी राजमार्ग के निर्माण सम्पन्न नै हुई नागरिक उपकरण आवजावट गर्नमा समस्या। जानकी गाउँपालिका से कर्मचारी सरुवा कुछ पालिका से समेत बाहर त कोही पालिका भित्रे। ओ आज टिकापुरमा क्षेत्रमा 6 घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुइन। पूरा खबर। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम रहेर आज कोसी बागमती गण्डकी लुम्बिनी हो कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भाग में 1-2 स्थान में भारी पानी पर्न संभावना बा। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल मनसूनी न्यूनचापीय रेखा पश्चिम से समेत सरदर स्थान के आसपास तथा पूर्व ओर सरदर स्थान से फिर समेत कुछ उत्तर पंजार रहल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्र में आंशिक समेत मौसम बदलती रहल तथा मौसम बाकी भूभाग में मौसम सामान्यतया पूर्ण रूप में मौसम बदले सेकना कहलवा कलसे। कोशी बागमती गंडकी कर्णालियो लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में हल्का मध्यम पानी पड़ती रहल जनाइलवा। हाल देश के दोपहर के देशभर सामान्यतया मौसम पूरा रूप में बदलना उसक हिमाली भाग में कुछ स्थान में मध्यम तथा हिमपात के संभावना रहल बा कलसे। पहाड़ी भेग में तराई समेत कुछ स्थान में समेत हल्का से लेके मध्यम वर्षा होना अनुमान करल बा। कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी समेत कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में 1-2 स्थान में भारी वर्षा के संभावना बा। आज रात की देशभर सामान्य से लेके समेत पूर्ण रूप में मौसम बदलना पूर्वानुमान करगिल बा। कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली भाग में कुछ तथा लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली क्षेत्र में 1-2 स्थान में मध्यम वर्षा और हिमपात के संभावना रहल बा। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना अंतर्गत कैलाली में निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग के काम अभिन फे पूरा हुई नहीं सकल हो। निर्माण सम्पन्न करे पर्ना मिति से फे 3.5 वर्ष ढेर समय बीत सकले से फेन हुलाकी सड़क के काम पूरा नहीं हुई के हो। हुलाकी राजमार्ग के स्तर उन्नतीकरण काम 2079 पुष मशांत सम निर्माण सम्पन्न करे पर्ना समझौता रहे। मनोआविन फे 2 क्षेत्र मिला के 13.5 किलोमीटर सड़क क्रियापत्र होना बाकी रहल बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत शक्ति से लेके धनगढ़ी सम 7.5 किलोमीटर हो। उत्तर दक्षिण खखरौला खंड में लम्की सम समेत 6 किलोमीटर सड़क निर्माण हुन बाँकी रहल। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय धनगढ़ी के प्रमुख मुकुन्द प्रसाद लामी छाने बटोले बाटै असिके समझौता मिति से फे 3.5 वर्ष पूरा करेबेर फे सड़क क्रयपत्र नै हुन यहाँ के नागरिक उकरण आवट जावट में समस्या हुई रहल। टिकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 6 नारायणपुर के स्थानीय चतुर प्रसाद खनाल के कहेबा उसके स्थानीय भरत बम्फे सड़क समय में नहीं बनके अपना हुकरन इस समस्या से समेत सड़क आवट जावट करना में ढेर दुख पैती रहल बटोले बाटे। शक्ति से लेके धनगढ़ी सम पूर्व पश्चिम में 69.70 किलोमीटर ओ खखरौला से लम्की सम समेत उत्तर दक्षिण में 29.7 किलोमीटर सड़क स्तर उन्नति के लाग नेपाल सरकार से ठेक्का लगाइल के हो। टिकापुर क्षेत्र में आज 6 घण्टा विद्युत आपूर्ति बंद होना कहलवा। लम्की टिकापुर 33 KV प्रसारण लाइन के लम्की स्टेशन में स्तर उन्नति के काम होना रहे ओर से आज विद्युत आपूर्ति बंद होना बताया गया। टीकापुर के ज्योति नगर से लेकर सशस्त्र प्रहरी बल तथा शंकरपुर क्षेत्र बाहेक के स्थान में 6 घंटा विद्युत आपूर्ति बंद होना नेपाल विद्युत प्राधिकरण के वितरण केन्द्र टीकापुर से जनायल बा प्राधिकरण से आज बिहान 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे सम 6 घंटा के लाख बंद होना सूचना जारी कर लफेन काम ओराइल पासे विद्युत हाली नईना नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर के प्रमुख आनन्द सापकोटा जानकारी दिले बाटे। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछे फेर सही भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको बेवरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
4: थाहा पाउँदैछु यस्तो अवस्थामा पनि खान सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
7: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
6: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर। भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छतपति लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ ईसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक, भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पासे फिर से स्वागत बा। सुरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह प्रदेश के सामाजिक सद्भाव कायम करतलाक सबको पक्ष अपील करने बाट कालिक धनगढ़ी में प्रदेश सुरक्षा निकाय के प्रमुख हुकन संगे हुई छलफल में मुख्यमंत्री शाह सामाजिक सद्भाव कायम धरकला को करैना सक्कू जिल्लामा समेत सद्भाव र्याली आयोजना गर्न निर्देशन दै गिल्बा। साथै वहाँ माठटके निकाय हे शान्ति सुरक्षाके व्यवस्था थप मजबूत बनाइना फे सक्त समेत निर्देशन दै गिल्बा। पूर्वी तराईके तमाम जिल्लामा उत्पन्न पार्श्विक परिस्थितिके आकलन गर्थे। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परसकिन सम्भावित सुरक्षाके जोखिम प्रति सचेत रहन मुख्यमन्त्री शाह आग्रह गर्ने बाटै वहाँ शान्ति सुरक्षा समेत खलल पुग्ना करके हुई सेकना कौनो फे परिस्थिति है तत्काल नियंत्रण में लेना पूर्व सुरक्षा तैयारी चुस्त धरना सुरक्षा निकाय हुकरन निर्देशन देहल के हुए असह के मनसून के समय में हुई सेकना बाढ़ पहिरो दुबान जैसिन प्राकृतिक विपद प्रति उच्च सतर्कता अपनाइना विपद व्यवस्थापन के लाग सबको तैयारी अवस्था में रहना सम्बद्ध निकाय हे समेत मुख्यमंत्री शाह के से ध्यान आकर्षण कराए बाटे। उक्त छलफल में आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव प्रदेशके तीनथो सुरक्षा निकायके प्रमुख हुकरनके उपस्थिति रहल रह। सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँ बीच भेटवार्ता हुइल बा। कालिक हुइल प्रमुख निवासमा समेत भेटमा पाँचक समयमा सुनसरी सिराहा लगायतकी क्षेत्रमा देखिलेक सामाजिक सद्भाव उ धार्मिक द्वन्द के प्रभावमा सुदूरपश्चिम परिसकना सम्भावित जोखिम के पूर्व सचेत रहना कहती सामाजिक सद्भाव कायम करतलाक विषयमा छलफल हुई बा। मुख्यमन्त्री शाह समेत सम्भावित क्षेत्रके व्यवस्थापन केलाक प्रदेश सरकार से समेत पूर्व तयारी रहना प्रमुख मियाँ हे जानकारी करा गेल बाटै वहाँ यी विषयमा प्रदेश स्तरमा सुरक्षा निकाय प्रमुख हुकन संगे फेर छलफल हुई जानकारी करागिल बा। जानकी गांव पालिका से पालिका भीतर के कर्मचारी सर्व करल बा। तमाम शाखाओ कयों हुकरान वाड़ा तथा स्वास्थ्य संस्था में सर्व करगिल बा। जानकी गांव पालिका के भीतर के 53 जाने कर्मचारी हुकरान के आंतरिक तथा बाह्य सर्व करल बा। सग सर्व करबेर कयों पालिका भित्रे शाखाओ कयों हुकरान वाड़ा तथा स्वास्थ्य संस्थामा सर्व करल बा। पालिकासे 6 जाने कृषि प्राविधिक ओस्तक 9 जाने वाड़ा सचिव 5 जाने पशु प्राविधिक 26 जाने स्वास्थ्यकर्मी 4 जाने सहायक 3 जाने प्रशासन कर्मचारी हुकरन सर्व करल बा। कलशे 3 जाने और पालिकासे सर्व हुके आयल जानकारी करागिल बा। सर्व नियमित प्रक्रिया अलग वर्षे सर्व हुके हुल सोचमा सकारात्मकता समेत ऐना और एक ठाव के अनुभव से और ठाउँमा फे काम करबेर सहज हुइना कहती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त बत्ता के कहाइबा। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 के वाडा सचिव प्रमिला शर्मा वार्ड नम्बर 3 मा सर्व हुइल बाटन कलसे वहाँ प्रशासन मा समेत महिला विकास हुइती अब वार्ड नम्बर वाड़ा सचिव मा समेत फुके काम करती रलक बटागिल बा एक वाड़ा से औरे वाड़ा मा सिकाई हुईना फरक ठाउ के अनुभव हुईना वहां के कहाई बा वार्ड नम्बर नौ के सचिव आनंद उपाध्याय अब पालिका की प्रशासन शाखा में सर्वफिल बाट यागे वहां जानकारी समेत वहां सहकारी शाखा के प्रमुख ओसक वाड़ा सचिव की जिम्मेवारी समर्ति रहल बताइल बा काम करते सिक्ति जैना रलकोर से फरक फरक क्षेत्र में काम करना पागे सिकाई हुई वहां के कहाबा कृषि प्राविधिक चक्रभात के लम्बा समय सम वार्ड नम्बर आठ नौ में कृषि प्राविधिक होके काम करल है अब सात नम्बर वाड़ा में सर्वहिल बाट वहां लम्बा समय से एक ठाव में कृषि प्राविधिक होके काम कर पाके जनप्रतिनिधि हो कृषक उकरण की माया संगे कृषि क्षेत्र में मजा सिकाई हुई लो वहां अनुसार और ठाव में काम करना बटोले बाट पालिका के कर्मचारी उकरण के सरवा कर संगक तमाम वाड़ा में समेत आयल ओ स्वागत ओ सरवा होके गैल कर्मचारी उकरण विदाई करना काम जारी रहल बटवागिल बा यह बीच में जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर नौ से फे कर्मचारी विदाई समेत करल बा ऐना जैना समेत कर्मचारी हुकरण अवया हुकरण स्वागत करल बा कलसे कर्मचारी जौया हुकरण फे विदाई और स्वागत समेत संगे करल बताईटी वाराध्यक्ष भंडारी से सर्व होके जैना कर्मचारी हुकरण और ठाव में फे मजा काम करना सुझाव देती आयल कर्मचारी हुकरण फे वाड़ा है मजा बनैना सहकार्य के काम करना बटोले बाट खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाक से फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
2: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
2: तपसिल
5: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
2: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
5: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
2: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
5: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
2: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
8: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
9: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
10: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
11: मै नै जाइँ,
10: उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
11: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
10: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तुम अब भी जाए।
12: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846077417।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड मा सहकारी संस्था से समेत संचालन सम्बन्धी दुई दिने नेतृत्व क्षमता विकास तालिम संचालन करवा संस्था के लाओ नेतृत्व विकास करना उद्देश्य से आयोजना करगिलक तालिम में सहकारी राष्ट्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से प्राविधिक सहयोग करलबा। तालिम में राष्ट्रीय सहकारी बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रमुख हीरा सुनार से सहजीकरण करलबाट। संस्था के उपाध्यक्ष मनोज कुमार साउत के अध्यक्षता में हुई तालिम उद्घाटन करती सहकारी के संस्थापक अध्यक्ष गणेश बहादुर साउदले नेतृत्व सही रलसफेयर संस्था फस्तैरा बटैती नेतृत्व मजा हुई पर्नामा जोड़ दिले बाट। व्यवस्थापक छविलाल जैसी संचालन करल कार्यक्रम में स्वागत कुशाध्यक्ष धनंजय ढुंगाना करल रहें। कार्यक्रम में संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष बद्री प्रसाद भट्टराई लगायत पूर्व पदाधिकारी

31.70 अरब बराबर के बजेट पारित हुई नई सेकला को लौवा बजेट ऐना ठोस सुरसार समेत नई डिग्गी लगो से अन्योल थप बढ़ल बा प्रदेश सभा बजेट में समेत होल्ड रलक अवस्था में औरत और नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के सरकार में अस्पष्ट अल्पमत परल बा कल से बजेट के विषय में विवाद बढ़ती जाए बेर मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह तत्कालीन सत्ता गठबंधन के घटक नेकपा एमाले मंत्री हुक्रम समेत बर्खास्त करल रहे लगते एमाले सरकार है देहल समर्थन फिरता रहे पासे प्रदेश में राजनीतिक ओ समेत वित्तीय अस्मिश्रितता समेत आईलक बताया गिलवा अल्पमत में पड़ल मुख्यमंत्री शाह है साउन 28 गते सम प्रदेश सभा में विश्वास के मत लेना संवैधानिक समय सीमा रहे यद्यपि केन्द्र में विकसित नया समीकरण अनुसार सुदूरपश्चिम के सरकार के नेतृत्व लेना विषय में नेकपा एमाले ओ समेत माओवादी बीच सहमति फुसेगल बा। यह समाचार संगे खोज खबर आयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से आज देशभर कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना सतर्कता अपनाइन नागरिक मौसम बीत के आग्रह समझौता के मिति में 3.5 वर्षा समय घट लग्ल से फेन कैलाली के हुलाकी राजमार्ग के निर्माण नई उड़ाइल नागरिक आवत जावत में समस्या जानकी गांव पालिका से कर्मचारी सरुआ कुछ पालिका से बाहर त कुछ पालिका में समेत भीतर अईदे ओ आज चिकापुर क्षेत्र में 6 घंटा विद्युत आपूर्ति बंद होना लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकली अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनते रहिए राम राम।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर। अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: बर्खाक समय थे बा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसवा आयल कला से आबा मुसवा खुस्ती सब वाफे आई सकता।
2: ओहो हो निका सबको समझनो घरक अंदर पादर जोसास से बाहर से कत्था का पहिल बा काटा पर ना रह।
1: हाँ असी करी हर बुढ़िया वो सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका का बासी खाई दूसरा सर परियार मन मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर भी तो नहीं हुई
2: हुई था हो बुढ़वा असी जाला मदर ध्यान घास पोहर झपास भी था उमा ताप नुक्का बैठल रह सकते ना
1: वह से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना मेकर चबरदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से सांप अहिना का उत्साह कम हो जाए
2: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
3: सात बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिलक ओर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
4: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सक
5: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बर थी रहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ।
4: शिविर सञ्चालन हुने स्थान
3: वडा नम्बर 4 को कार्यालय साउन 17 देखि 19 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 2 को कार्यालय साउन 20 देखि 25 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गते देखि 3 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
4: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म।
3: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म।
5: याद गर्नुहोस्, 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
3: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्पर्क नम्बर 98485-018-88, 98485-015-56 र 98486-13434।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
2: अदि गहना बनाइन त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना त कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन लबाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाइ औ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स न घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए और ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: हुक्का पी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई या झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से कठिन
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाइबू रख गई या झोला उद्योग में रख गई या झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: सूचना सूचना सूचना
1: कंसल्टेंट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एमबीबीएस एमडी इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबोलिज्म डाक्टर कृष्ण ऐरी ईशान मेडिकल हल टीकापुर में यही साउन 23 गते चौथो शनिवार का दिन ग्रामीण चेक जांच करना आउँदै हुनुहुन्छ।
0: निम्न समस्या
1: सुगर रोग
0: गर्भकालीन मधुमेह
1: महिला को शरीर में अनावश्यक रौं बढ़ने
0: सुगर रोग का कारण होने समस्या जस्ते खुट्टा झमझमाने पोल्ने दिन तथा रात में पटक पटक पिशाब लगने मुख सुक्ने तिर्खा लगने
1: थायराइड कम जस्ते थकान लगने तौल बढ़ने छाला सुक्खा हुने कपाल झर्ने अनुहार फुल्ने चिसो बढी लाग्ने
0: थायराइड बढी जस्तै तौल घट्ने धड्कन बढ्ने पसिना धेरै आउने निन्द्रा नलाग्ने हात कामने चिचिडापन आँखा फुलेर बाहिर आउने
1: कम उमेरमा पनि प्रेसर मोटोपन कोलेस्ट्रोल बढ्ने
0: उमेर अनुसार शरीरको उचाइ

0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली टिकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 98484 27359 र 98442 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
2: ओहो त हेर बुढिया, बर्खाक समय थिए बा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसुवा आयल कलश आब मुसुवा खुसी सपोसे आइसे था।
3: ओहो हो निका ठ्याक्क सम्झनु घरक आँजा पाटा झसास थिए बाहर कस्ता कता हुइल बा काटा पर्ना रह।
2: असी करी हेर बुढिया, ओ सिन्हो कलशे काल मिट्टी नाओ टेला रोटी पकाक बासी छाइ, दोस्रा सर परिवार मने मिलक सर सफाई करबी, दोस्रा आँजर पाँजर रहल फोहर का व्यवस्थापन करबी तनी भी
3: मिठा हो बुढ़वा। असिन जाला मा त ध्यान घास फोहर झफास भी ठाउँमा साप नुख बैठल रह सक्छन।
2: ओहो सेटा कलक हो छाइ समीरा छावा विवेक तुओ मै मिल्थ घरक आँजर पाँजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी, कालिक लानल काठे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाइ पड़ल, बखारिक मुहकर से साँप मुस्कु चुके पैठनी सेकना मेर चबदार पड़ल, दोसरा घरक आँजर पाँजर फसफार ओ सफा हुई से साफ पहिना त उस्तह कम हो जाए।
3: काल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
4: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन परे था, इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट।
5: मोस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लघ आई सक
6: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसे पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था।
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर भर आई थी राहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था?
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिले जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला और कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन्छ भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602204।
7: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
8: भैया ना करा रेडु बिक्री।
9: नहीं का मम्मी, टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का।
7: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक, अपने के मन में जोन प्रतिभा आयता वो प्रतिभा सुनाई लग आई। कोई गीत, गजल, भावना, मुक्तक, चुटकिला, शायरी, शेर, कोई भी नेतन के कैरिकेचर, चिड़े चुरुंगर, जानवर की आवाज, कोई भी चीज, कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी। साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी। केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुनेक ना भूलेगी।

0: कबू का तीर कबू पेंसिल कबू झोल फटाका आजी का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउसे झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आन झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: काती कभी पेन्सिल कब्बू झोले फटाका आजी का हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँसे झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीखो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कतरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हेरा थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिले जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबरमा अपनीकन स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम अपने उखरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारा पात्र नेपाली पात्र मफी सुन्दी धलवाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर वन संरक्षण समिति के उपभोक्ता वन मसे पैलक सुविधा मसे खुशी नेतृत्व क्षमता विकास तालिम सम्पन्न विपक्षी ध्वजस्विन घटना में 196 जना की मृत्यु 4000 से धेर बढ़ी घटना ओ सरकार हिन्दू प्रतिनिधि बीच 19 बुधे सहमति आन्दोलन के कार्यक्रम फिर्ता खबर 2064 साल में टीकापुर नगरपालिका के मातहत मैलक टीकापुर बनुआ संरक्षण समिति में बस 16 टोलके 600 जति उपभोक्ताहरूबाट सामुदायिक बनुवामा करलग काममा से उपभोक्ताहरू खुशी हुलबाट टीकापुर बनुवामा संरक्षण समिति के उपभोक्ताहरू बनुवाके काममा से खुशीबाट टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित उक्त टीकापुर बनुवा संरक्षण समिति के उपभोक्ताहरू बनुवामा करलग काममा से आफ्नो फाइदा पुग्लकटी खुशीबाट वन संरक्षण समिति के उपभोक्ता लक्ष्मी देवी तिमिलसना बुटिलवाटी लक्ष्मी तिमिलचला जस्ता व्यवसायिक क्षेत्र के मनसरा साउथे सामुदायिक बन्न मसे पैलक सुविधा मसे ढेर खुशी लगलग बटिलोवाटी सरस्वती लुहारफे सामुदायिक बन्न मसे मजा सुविधा पैलक बटिलोवाटी और उपभोक्ता बुद्धिराम थारूफे ए समुदाय मसे बन्न मसे खास पैलक ओ काठी पैलक आफ्नो खुशी हुलक बटिलोवाट स्थानीय उपभोक्ता देवेन्द्र साहफे सामुदायिक बन्नके कारण आफ्नो गैया भैसी पन्ना पैलक मसे काठी पैलक कर्ला खुशी हुलक व्यक्त कलबाट मनके जन्मसे मुअलसम बन्नमा के आवश्यकता पर बन्नमा बिना मनिन्के जीवन नै सम्भव नै हुटके के हो कारण बन्नमा जगैना आजकै आवश्यकता हो के उहाँ उपभोक्ता मोती सिंह विश्वकर्मा बुटिलोबाट 133 मेगा 18 कठा 4 धुमा फैलल संरक्षित बन्नमा सिसम सिमल खैर फेलर रोहनी अस्ना जामुन लगायत के बन्नमा पैदावार रहबा उक्त बन्नमा चितुवा बाघ नील गाई बदेल लगायत के जनावर के संग मयूर बन्नमा मुर्गी लगायत की तरह चुरुंगी व अजिंगर फिफाई नगर जाए 2064 साल पास टीकापुर नगर पालिका के मातहत मैलक बन्न मोर टोल के 600 जति उपभोक्ता टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के आयोजन में संचालित सहकारी संस्था संचालन संबंधी दुई दिने नेतृत्व क्षमता विकास तालीम आईतवार संपन्न हुआ संस्था के वर्तमान नेतृत्व थप सशक्त बनेना तथा नया नेतृत्व विकास करना उद्देश्य के आयोजन करलक तालीम में राष्ट्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्राविधिक सहयोग कलबाट तालीम में राष्ट्रीय सहकारी बैंक के सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रमुख हीरालाल सुनार सहजीकरण कल रहे संस्था के उपाध्यक्ष मनोज कुमार साउत के अध्यक्षता में हुलक तालीम समापन कार्यक्रम में संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष तथा सलाह

0: के धेरो तराईकी कुछ ठाउँमा हल्कासे मध्यम वर्षा हुन अनुमान गरिर्वा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेशके पहाड़ी भागकी एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा हुइसक्नवा आज रातके फेरि देशभर सामान्य से पूर्ण बदली रहना पूर्वानुमान गरिर्वा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकी हिमाली भागकी एक दुई ठाउँ तथा लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकी हिमाली तथा क्षेत्रकै एक दुई ठाउँमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातकै सम्भावना वा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशकै पहाड़ी भागकै थियो तथा कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कुछ ठाउँमा मध्यम वर्षा हुन सम्भावना वा उपनगरकै मध्य प्रदेश तथा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशकै तराईकै थियो र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तराईकै कुछ ठाउँमा मध्यम वर्षा हुइसक्न महाशाखा जनाएर वा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै हिमाली पहाड़ी तथा तराई भूभागकै मध्य प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश तराईकै कुछ ठाउँमा भारी तथा एक दुई ठाउँमा थियो भारी वर्षा हुइसक्न वा महाशाखा के भारी वर्षा के सम्भावना लक्ष्य क्षेत्रमा गेग्रान बहाव भरिया पहिरो से भुच्छे मसे हुना जोखिम ध्यान धर्के सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नबाट प्रतिकूल मौसम के कारण दैनिक जनजीवन कृषि स्वास्थ्य सेवा पर्यटन पर्वतारोहण तथा सड़कको हवा यातायात प्रभावित हुइसक्न हुलक विभागके पासक मौसम सम्बन्धी सूचना बारे नियमित अत्यावधिक रहनाफी अनुरोध गर्नबाट गृहमन्त्री सुदन गुरूङ नेतृत्वमा अलग सरकारी टोलियो हिन्दू सम्राट सेना नेपाल बीच आइतबार जनकपुर धाममा हुलक वार्तापछ 19 विदेश समझदारी हुलवा समझदारी संघ हिन्दू सम्राट सेना नेपाल जारी आन्दोलन तथा विरोधके सक्कु कार्यक्रम फिर्ता लेहल घोषणा गर्नबाट इन्स्याख शनिबार संयुक्त हिन्दू मोर्चा सरकारमा बुझेलक 13 बुधे माग पत्रमा थब्बा बुन्दा समावेश गरी 19 बुधे प्रस्तावमा दुनू पक्ष बीच सहमति हुल रह जनकपुर धाम स्थित एक होटलमा गरीब डेढ़ घण्टा चलक वार्तापछि हिन्दू सम्राट सेना नेपालकी उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनी सरकारकी आफ्न मागप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त कलको कार्यान्वयन केलाक आवश्यक प्रक्रियाक बढ़िन सहमति हुलक जानकारी दिलबाट समझदारी अनुसार आन्दोलनकै क्रममा पक्राउ पर्ल रिहा गर्न उहाँको उपर मुद्दा नै चलेना तथा आन्दोलनकै क्रममा गोली चलेना सुरक्षाकर्मीकै छानबिन गरेकै दोषी ठहरेला कानून बमोजिम कार्यवाही गर्न विषयमा सहमति हुलवा वार्तापछि गृहमन्त्री गुरूङ सरकार पूर्व 13 बुँदे थप कलक 6 बुँदे मागपत्र औपचारिक रूपमा ग्रहण कलक बोटेकी सहमतिकै विषय कार्यान्वयन केलाक प्रक्रिया आग बढ़िन जानकारी दिलबाट इन्स्याग बुझेलक 13 बुँदे मागपत्रमा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना गर्न विषयमा छलफल चलेना धार्मिक स्थलकै व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जाल मार्फत धार्मिक तथा जातीय देश फलिना गतिविधिकै उप कानूनी कार्यवाही गर्न सुनसरीकै देवानगंज घटना पाछक पक्राउ पर्लक मुद्दा पुनरावलोकन गर्न घाइतेहुकनकै उपचारकै व्यवस्था गर्न धार्मिक आयोगकै पुनरावलोकन कन तथा नागरिकता छानबिन लगायतकी विषय समावेश रहँदा ओस्नगरकी थप कलक 6 बुधे मागमा नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा पुनस्थापना केला संसद छलफल गरिन घुसपैठ नियन्त्रण केला उच्च स्तरीय छानबिन गरी सीमा सुरक्षा कड़ा बनिन धार्मिक संस्थाकी आर्थिक स्रोतकी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतकी निर्णयअनुसार लाउडस्पिकर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा नागरिकता छानबिन लगायतकी विषयमा उल्लेखित बास सुनसरीकै देवानगंज घटनापाछ मध्य प्रदेशमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरूङ नेतृत्वके टोली जनकपुर धाम पुगल रहे वार्तामा गृहमन्त्री मध्य प्रदेशकै प्रतिनिधि धनु साक्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेल सुरक्षा निकायकै प्रमुख र तथा हिन्दू संघ संस्थाकै प्रतिनिधि हुकनकै सहभागिता रहल रह
1: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
2: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
1: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
2: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
1: अब त म ढुक्क
3: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
2: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
0: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
4: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खट्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, गन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
0: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
4: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825677772।
2: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
0: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ब्याग, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, सञ्चालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808। विश्राम पाछा फेरि सगरबा ब्राह्मण समाज नेपाल टिकापुर नगर समितिकै सल्लाहकार समिति चैनपुरबाट समाजकी अध्यक्ष डमर प्रसाद रिमालकी अध्यक्षतामा आइतबार टिकापुरमा बैठक, गंगाराम आचार्य संयोजकत्वमा 12 सदस्यीय सल्लाहकार समिति चैनपुरबाट सल्लाहकार समितिकै सदस्य क्रम श्यामराज पाण्डे, डाक्टर योगेन्द्र बजगाई, सृजना शर्मा पण्डित, हृदयराज रेग्मी, सुमन प्रसाद नेपाने, टिकाराम आर्य, गौरीशंकर जोशी, चेतराज भट्टराई शर्मा, महानन्द वाग्ले, मोहन प्रसाद उपाध्याय, नन्दराज उपाध्याय चयन हुइलक, ब्राह्मण समाज कैलालीकी जिल्ला सचिव देवीलाल जोशी जानकारी देलबाट सल्लाहकार समिति चयन कलक बैठक, बैठकमा टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 के वडा अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद निपाने प्रमुख अतिथि रहल रहे। संयुक्त राज्य अमेरिकाकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पके मध्य पूर्वकी सहयोगी मुलुक र इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्न सम्झौताकी प्रारम्भिक रूपरेखामा सहमत हुलक दावीकर्ती तत्काल किल्लाक नयाँ सैन्य आक्रमण नैकर्न संकेत देलबाट शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत ट्रम्प प्रस्तावित सम्झौतामा स्टेट अफ होमरजुमा पूर्ण रूपमा खुल्ला धरना वा इरानकै आणविक खतरा अन्त्य गर्न विषयमा समावेश हुन बुटिलबाट हाली सम्झौता हुन अवस्था बन्ला फेरि विश्व के भविष्य समृद्धि इरान केलाक आक्रमण रद्द कनाफी सहमतिबाट टुकैकी ट्रफ लेख्लबाट उहाँके अनुसार इजरायल मफिया युद्ध अन्त्य केलाक इरानसँग सम्झौता गर्न अमेरिका प्रयास समर्थन कल्बा यद्यपि ट्रफकी घोषणाप्रति इरान तत्काल कुनो फेर प्रतिक्रिया जनाइन नभिट पाँच महिनासे जारी द्वन्द्वमयी पाछक अप्रत्याभिषित मोडल हो यही दिनसे केले ट्रफ इरानमा वार्तामा ऐना बाठे पर्ना पुनः व्यापक सैन्य आक्रमणके तयारी हुटेर संकेत देल रहे अमेरिका औ इजरायल फेब्रुअरी 28 इरान विरूद्ध सैन्य कार्यवाही शुरू कल रही ट्रफ यही बेला ईरान के छ्याफ्यात्र क्षमता नष्ट कर आणविक हतियार विकास रोक्न तथा ईरान समर्थित सशस्त्र समूह दिन समर्थन अन्त्य गर्न उद्देश्य अलग बोटेले रहन यद्यपि युद्धकै उद्देश्य व रणनीतिक समयक्रम परिवर्तन हुलक ऐटिरहलबा जुन मध्ये उहर हुलक अन्तरिम युद्ध विराम पाछ स्थानीय सम्झौताकी अपेक्षा कल रह स्टेट अफ होमरजुमा जहाजकी उपर पुनः आक्रमण हुल पाछ कुछ हप्तामा युद्ध विराम भंग हुल रह। टिकापुर बनुवा संरक्षण समितिकी उपभोक्ताहरूको बनुवामासे पहिला सुविधा मसे खुसी, जनकल्याण नेतृत्व क्षमता विकास तालिम सम्पन्न, विपत्की अधिवेशन घटनामा 196 जनाकी मृत्यु, 4000 से घटना, ओ सरकार ओ हिन्दू प्रतिनिधि बीच 19 बुझे सहमति, आन्दोलनकै कार्यक्रम फिर्ता, निता अबकला खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती अबकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई तू एक पास छह बजे के खोज खबर सुना सिग्वी सामुदायिक रेडियो टीका अपर एफएम सुनती रवि राम राम।
5: नाता छावा सांपन कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता ले वो अपने चल गए था कुछ कराए था वो सब कुछ आप बिखाह थे निरता
6: बिखाह हो कि नहीं हो कका कसी कसी हिनाता दाई
7: ले नेपाल में पाजे ना बिखाह सांपन का विषय मसून एक थोड़ा ठह गरे जा जो उन खास कह घर रातिक समय में घर भीतर पैठा सेक था ये कटला से निबटाई फिर से आकर तरह कटला पास है देह भाग जो निचलना कह घर सास ठहर जो निशेकना में से लक्वा हुई सेक था और रठह डोम जो उन बड़ा रिशाह में ही रठह इनकर फाट फुले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह घर संजय बिहान देख पड़ता इनकर कटला से फिर लक्वा हुई सेक था वो और रठह कई जाटक सांप इनकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर रसे बैठे था रकत फिर पाची होकर रकत बहना हुई से था उस समय का हमारे देशक तरह एक सक्कू भूभाग में पा देना बगोप ने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकम कटाई एकदम खतरनाक रहा।
8: बरखा छाया को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा जसाई का घटना धीर मिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप के कारण सापन का बछारा नाशिवे सापन का जसाई का घटना धीर मिना कर लग पा जाए
9: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
5: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था।
10: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
11: बाढ़ी पहिरोले प्रत्येक वर्ष नेपालमा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसैले बाढ़ी पहिरोको समय अगावै समुदायमा जनचेतना जगाउने र न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउनु पर्छ।
12: जोखिम स्थलको पहिचान तथा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।
11: सुरक्षित स्थानको पहिचान र सो स्थानमा जान सकिने बाटोको पहिचान गरिराख्नुपर्छ।
12: एकोहोरो लामो समयसम्म वर्षात भयो भने पहिरो तथा बाढ़ी जान सक्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ र सचेत रहनुपर्छ।
11: बाढ़ी आइहालेमा घरको विद्युत लाइन तुरन्तै बन्द गर्नुपर्छ।
12: सुक्खा खानेकुरा औषधि प्राथमिक उपचार सामग्री बहुमूल्य गहनाहरू र आवश्यक कागजातहरू लिएर तुरन्तै अग्लो तथा सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ।
11: सुरक्षित स्थानमा जाँदा घरको झ्याल ढोकाहरू राम्रोसँग बन्द गर्नुपर्छ।
12: यस्तो अवस्थामा वृद्ध केटाकेटी अशक्त तथा गर्भवतीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
11: विपदको घटना भएमा तत्काल रेडक्रस तथा सुरक्षा निकायलाई खबर गर्नुपर्छ।
13: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उ मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: कार्यक्रम मझेरी
4: मझेरी मझेरी
5: भैया ना करा रेडू बिगरी
6: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आयता वो प्रतिभा सुनाए लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला साइडी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाए लग हम फोन करी साता के बीही बार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फ

आयो मिठुत प्रीतम विष्भोजन मुक्ताई सारा भवन मेरा छुटाई साथ मन फेरे मेरो माया लाई फुल से रगायो मिठुत प्रीतम।

0: हुक्का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आजी था का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733

0: जी प्रयापुग्नु तपदस्था दरम्यान रसरस अंगनामा ल्यानपुग असे हिँडरह
1: एक गतिना हाम्रा सहयोग कैखल डेन्टीबाटी बिहान मोटरसाइकल घुमाकर धर्ने करिना
0: बैठा बैठा दरम्यान रसरस मर्पा छ बैठाई को एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश हुई नापिला कोर्से पाछा से पकड़ का बैठा पर्था का
2: ब्रह्म्याना अगर हुई कही कम पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लैजिना सजिलो हुई बा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उतरफे बाट सजिला से वो झट्ट पादिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेरक सुचाक लगभग एंटी भेनम भैलक उपचार केन्द्र में लै जाय पड़ता
1: अपना हुआ जैने करी ना मैं द्वान लगा करके ला दे
0: वहां न कटलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी
3: सप्फ डज दारण कलश उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे न अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिनामेर से बैठाई वो लगभग एंटीभेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जाडारी सप्फ कटलसे मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

वासुदेवं वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरया परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय।

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।